0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: साइन हो गए तो मुझे नोबल लेने से कोई नहीं रोक सकता।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: भाई तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: A city of dreams, a city of toppers, and now a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
4: Thanks.
0: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
5: दो साल से नहीं कोटा में हम यहाँ दो साल से तैयारी कर रहे हैं अच्छा एग्जाम गया था वैसे लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा 21 तारीख को पेपर देंगे वापस दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा तो भूल जाते हैं ना रिदम टूट गया था मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम हाँ तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में

0: अभी बज रही है शाम के 4 बजे एंड आई एम गोइंग टू ऑफिस दिस टाइम बिकॉज़ टुडे इज मैंगो फेस्टिवल एंड आई डू नॉट वांट टू मिस इट।
1: इतना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है।
2: A Google employee has given the internet a delicious look inside the company's annual mango festival in Bengaluru. From mango pani puri and gelato to themed cakes and desserts, the celebration dedicated entirely to the king of fruits left viewers both impressed and hungry.
0: अभी मैं mango festival attend करके आ रही हूँ and it was crazy.
3: बाकी सब ठीक बस चल रहा है बस चल रहा है।
4: तू भी कुछ बोल रे पुष्पा।
5: तू जानता मैं करने से डरता हूँ।
6: Hey, don't be silly यार। मैं करना चाहता हूँ। Dude, it's my dream। Just imagine।
2: A 73-year-old woman fulfilled a lifelong dream after her daughter helped her go skydiving in Australia.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: साइन हो गई तो मुझे नोबल लेने से कोई नहीं रोक सकता।

0: हेलो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: A city of dreams, a city of toppers, and now a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
3: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
2: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
4: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
5: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का भी अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
2: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
6: Thanks.
2: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
7: दो साल से ही कोटा में हम यहाँ दो साल से तैयारी कर रहे हैं अच्छा एग्जाम गया था वैसे लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा 21 तारीख को पेपर देने वापस दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा तो भूल जाते हैं ना रिदम टूट गया था मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम हाँ तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में

0: And some more breaking news coming in. This is regarding the rebellion within the Sena UBT. Now, Udhav Sena cracks whip on the rebel MPs, the six rebel MPs. Show cause notice has been issued to the absentee MPs. Udhav camp threatens disqualification. So rebel MPs get 24-hour ultimatum. Sena UBT tightens the noose on the rebel MPs. 24 hours to explain or face action. Udhav camp, Udhav Sena moves against the absentee MPs, those MPs who were absent in the Thursday meeting.
1: पूरा होगा, मैं शाम को फिर मुआयना करूंगा. ऐसा हर सेंटर पर दिल्ली सरकार ने व्यवस्था किया. मुख्यमंत्री जी खुद इसकी चिंता कर रहे
2: हैं. एग्जामिनेशन सेंटर का भी आपने स्थिति ली है, सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल
1: सेंटर पे जो केंद्रीय मानक है उसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पूरा करवा रहा है.
2: बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए. यहाँ पर आप देखिए कि हमारे साथ जो थे एजुकेशन मिनिस्टर जो की पहुंचे थे यहाँ पर जो की इंस्पेक्शन करने के लिए, जो की बता रहे हैं की किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है. नीट के जो तमाम जो ऑफिसर्स है वो स्कूल का जायजा ले रहे हैं. उसके साथ साथ कूलिंग जोन जो है वो बनाए गए हैं. मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कूलिंग जोन 100 मीटर की दूरी पर जो है वो बनाए गए हैं, ताकि जो अभिभावक हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाए. और ये सीधी तस्वीर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो कि नीट एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बाहर की तस्वीर है. एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली सरकार के आशीष सूद जो है वो पहुंचे हैं इंस्पेक्शन करने के. दिल्ली के अलग अलग स्कूलों का वो इंस्पेक्शन जो है वो इस वक्त जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं. कैमरा पर्सन अंकित के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक.
0: ऑलराइट, सो अहेड ऑफ द एनटीए नीट री एग्जामिनेशन, मॉक ड्रिल्स आर बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री, एंड दैट वाज दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद इंस्पेक्टिंग द मॉक ड्रिल्स. इनफैक्ट माय कॉलीग सुशांत मेहरा इज विद अस, हु स्पोक विद द दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर शॉर्टली. सुशांत, टेल अस मोर अबाउट द कन्वर्सेशन एंड व्हाट एल्स डिड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सेड.
2: देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल नीट की परीक्षा होनी है उसको लेकर के सरकार काफी संजीदा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार परीक्षा का मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार सरकार जो है उस पूरे मामले को लेकर के चिंतित है. और यही वजह है कि तमाम जो स्कूल्स हैं उसमें आज मॉकड्रिल जो है वो कराई जा रही है. एनटीए की तरफ से तमाम ऑफिसर्स आकर के हर स्कूल का विजिट कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन सेंटर का विजिट कर रहे हैं, ताकि ये सुचारू रूप से ये पुख्ता किया जा सके कि एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर एग्जाम होना है वो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सेफ है या नहीं. वहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा. कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए. इसके अलावा सरकार की तरफ से तैयारियां ये हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर खासतौर पर जो लोग आते हैं अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए उनको भी परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी सरकार की तैयारियां जो है वो की गई है. मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सीएम श्री स्कूल है पंडारा पार्क का, जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर है. कल यहां पर परीक्षा होगी, लेकिन वहीं से तमाम जो सेंटर्स बनाए गए हैं एग्जामिनेशन उनके पास ही कूलिंग जोन जो है वो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, ताकि जो अभिभावक आए वो यहाँ पर बैठ सके. उनको पानी दिया जाएगा, उनको शिकंजी दी जाएगी, उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है. प्रॉपर यहाँ पर टेंट लगाकर इस तरीके के कूलिंग जोन बनाने की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है. हर सेंटर पर इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी. खुद एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर इसका मुआयना कर रहे हैं कूलिंग जोन का, कि क्या वहां पर पूरी व्यवस्था है, किस तरीके की तैयारियां हैं, और आज पूरे दिन भर वो इसी तरीके की तैयारियों का जायजा जो है वो लेंगे.
0: शांत हमारे साथ बने रहिए. सो कूलिंग जोन्स हैव आल्सो बीन मेड near all the examination centers for the parents and for whosoever comes with the student. They can rest at the cooling center, and because it's summer time, and these were the visuals from the national capital where Delhi Education Minister Ashish Sood himself is inspecting all the preparations, all the high level security that is in place, with just hours to go for the NEET re-examination. So ahead of the re-NEET examination on June 21st, that is tomorrow, the National Testing Agency is conducting a nationwide mock drill across 5,500 examination centers across India. All centers have been placed under tight security with continuous CCTV monitoring in place and deployment of security personnel to maintain strict vigilance. Meanwhile, several states are gearing up for re-exam of NEET on war footing. In Uttarakhand's Dehradun, Curfew has been imposed around exam venues. Prohibitory orders around NEET re-exam centers include a 200-meter security cordon around exam venues. In Bihar, Chief Minister Samraj Chaudhary reviewed exam preparedness in a bid to ensure foolproof conduct of the NEET examination. Measures taken include GPS tracking of question papers and transport of question papers overnight. Earlier, Education Minister Dharmendra Pradhan chaired a high-level review meeting with the centre, states and also the NTA, focusing on security protocols, logistics and coordination ahead of the retest. Meanwhile, an 18-year-old NEET aspirant from Nagpur, Abdullah Mohammed Talib, got a shock when he saw his recently generated hall ticket. His examination center was in Abu Dhabi, 2,500 kilometers away, and he does not even have a passport. The hall ticket generated on June 14 listed the Abu Dhabi Indian School as his exam center. The family immediately contacted the NTA helpline, where an official assured them that the error would be rectified today itself. The family said that they were so worried that they began arranging travel documents and the flight tickets if the exam center was not changed. The parents were concerned about arranging a passport and travel at such a short notice.
3: आपके बेटे का क्या नाम है और क्या उसने प्रेफरेंस दिया था और आपको एडमिट कार्ड में क्या बताया गया?
4: मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद तालिब और मेरे बेटे का नाम है अब्दुल्ला तालिब। एडमिट कार्ड जब आया तो उसके अंदर सेंटर जो दिया गया है वो है अबू धाबी का। अभी हमने तो जो आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन किए थे, उसके अंदर भंडारा, वर्धा और नागपुर लिखे थे। पता नहीं ये कैसे, क्या मिस्टेक हुई इनके और क्या प्रॉब्लम आया थे, उन्होंने अबू धाबी सेंटर दे दिए। मेरा बच्चा कल से शॉक में है, बहुत रोया उसने, अभी भी वो सोया हुआ है और उसकी परीक्षा देने की इच्छा ऐसी लग रही नहीं और बहुत टेंशन में है। कल भी बहुत रोया हुआ, आज का भी उसका बहुत प्रॉब्लम है।
3: जब आपने इस पूरे मामले को लेके एनटीए के हेल्पलाइन पे शिकायत की तो क्या कुछ आपको बताया गया?
4: हेल्पलाइन पर हमने जब शिकायत की तो उन्होंने हमको मेल आईडी दिया और बोले इस पर आप अपनी तकरार लिखकर हमको मेल करो, और फिर मेल कर दिए हमने। उसके बाद उनका फोन आया कि हम आज 4 बजे तक, यानी सैटरडे को 4 बजे तक नया एडमिट कार्ड आपको।
0: And some more news coming in. 5 killed in Lebanon in Israeli strikes. Israeli drone attacks despite the ceasefire in place. Lebanon troops rocked by fresh strikes by Israel. So Israel has hit South Lebanon once again just hours after the truce. Fresh Israeli attacks being reported from Lebanon. At least 5 people have been killed in these Israeli strikes on South Lebanon despite the ceasefire in place. So 5 people are dead in this Israeli airstrikes and drone attacks in southern Lebanon on Saturday. And this comes just hours after a ceasefire between Israel and the Iran-backed Hezbollah group took effect. So that's the breaking news that's coming in. Israeli airstrikes, no end to Israeli airstrikes in Lebanon, and in the fresh strikes carried out by Israel, 5 people have been killed. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates on the other side.
5: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
1: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: आप सुविधा अधिकारियों को क्या सुविधा अधिकारियों को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियसली सीरियस, जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप
4: यूबीटी के मीटिंग को ये सब जन नहीं थे, इसमें ये हमारा सक्सेस है।
5: लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के साथ साथ करोड़ों रुपए भी दिए गए हैं और वो चुनौती दे रहे हैं कि आपके सिक्योरिटी आपके सिक्योरिटी के बगैर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर दिखा।
4: ये 4 साल यही बोल रहे थे। अभी हम जब गुवाहाटी गए थे तब बोल रहे थे हमको मार डालेंगे, अगर बरली से हम गए तो हमको मार डालेंगे। अभी तो हम जिंदा है। तो ये तो सिर्फ फेक नैरेटिव सेट करने का एक प्रयास है। जो अभी बचे हुए कार्यकर्ता है उनको मॉरल सपोर्ट देने का ये प्रयास है।
6: 9 सांसद लोकसभा में थे तो हमें पहले तलवार चलाते क्योंकि जानते हैं। लेकिन याद रखना, बाला साहब ठाकरे जी है, नाम नहीं मिटा सकते हो, न ब्रांड मिटा सकते हो, न पार्टी मिटा सकते हो। आज लगता है हम पीछे हैं, हाँ हाँ सही है, अनैतिकता से आप सब कुछ कर रहे हो, लोग भी देख रहे हैं।
7: And by no means least is with the United States, where we have made significant progress already on the conclusion of an interim free trade bilateral trade agreement, and we are in the final stages of concluding that agreement. Next week, in fact, the United States Trade Representative, Mr. Jamieson Greer, will be visiting India to take forward these discussions. And in the bilateral meeting between Prime Minister and President Donald Trump yesterday in Evian, this was a major subject of discussion. Both leaders once again gave instructions for this agreement to be concluded at the earliest possible. So you can see this visit.

0: आनंद उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आने के बाद समझ में आता है यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मेरा आना व्यर्थ हो गया।
1: Built in 1968, Chandan Dam lacks proper maintenance. It has four gates. Last monsoon, all four gates did not work, so water went back to the river. Things have not improved much a year later either.
2: कहने को जब फुल मेरा डैम रहता है वो सो लेवल है 500 फीट, वहाँ तक अगर मेरा पानी रहेगा तो ये 1084 हेक्टेयर में वो फैलेगा, उससे ज़्यादा पानी होगा तो वो स्पील कर जाएगा बाहर से आके नदी में चला जाएगा, चंदन नदी में जो गिर जाएगी, ठीक है। तो वर्तमान में जो है पिछले बार नहर के संचालन में जो है गेट टिल्ट करके रुक गया था, जिसके कारण कि पानी भी निकलता चला गया, और वर्तमान में अभी जो है डैम खाली है तो उसके लिए मैकेनिकल वाले लगे हुए हैं, अभी तक तो ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं है, है ना। पानी जो है अभी बरसात से जो भी बारिश हो रही है वो निकल रहा है नदी में, स्टोर नहीं हो पा रहा है।
1: This adds stress to the region's water demand for agriculture to daily needs.
3: Groundwater pumping has become predominant in several regions, especially in urban areas as well as in agricultural regions. So, for instance, if you look at the case of Punjab, we pump a lot more, almost more than the mean annual rainfall. That means if we take entire rainfall that occurs and recharge groundwater, then also we may not be able to match the recharge versus what we are pumping from groundwater, right?
1: India holds nearly 18% of the world's population but commands access to only about 4% of global freshwater resources. Maspur is a small village near the twin mining city of Dali Rajhara in the Balod district of Chhattisgarh. It's a difficult trek of 7 kilometers from Bastar's Antagarh. Meandering through narrow trail in the hills of Bastar, this region was once out of reach and under complete control of Naxals.
4: The woes that they have been facing since independence, they do not have simple access to drinking water, and how they are making arrangements for it, that's the story which is going to take center stage just in a while. But a struggle for us is to reach that particular village of Maspur, which is in Antagarh. We have just started the trek of this small mountain, and it's a 3 to 3.5 kilometer long stretch and trek that we have to do. And in fact, remember, we are just going to do the story and leave from here. But this is the everyday struggle of the people of Maspur, because the kind of struggle that we are going to do today, just to give you the story, the administration regrettably couldn't do this needful measure just to give the people what they needed all these years.
1: For people like Subay Singh, this is not trekking, it's a way of daily commuting.
4: कितना दूर है, और यहाँ तो आपने मतलब इस गर्मी में इतना किलोमीटर चढ़ के रोज आना जाना, हम लोग की हालत खराब हो रही है और आप बिल्कुल एकदम चिल खड़े हैं यहाँ पे, इनको कुछ नहीं हुआ है, ये अभी और ऐसे चल के बिल्कुल इनकी सांसें नहीं फूलने वाली है, ये रोज आना जाना है क्योंकि
5: लगातार जी रोज आना जाना चलता है,
4: रोज
5: चलता है आना जाना।
4: लोग चावल वावल लेने भी सोसाइटी जाते होंगे तो उसको बोझ लेकर आते हैं, 35 किलो का,
5: 35 किलो को कंधे पर बोझ लेकर इधर चढ़ते हैं।
4: यहाँ पे हमको चलने में मुसीबत हो रहा है, आप 35 किलो बोझ के साथ चढ़ते हैं?
5: हाँ मैम।
1: द इलेक्ट्रिसिटी पोज टुक इयर्स टू रीच मासपुर, it now awaits electricity to arrive. By these poles across the hillside, women of this area make an arduous journey as evening approaches. Not for work, not for cooking, but for water. Twice a day, every day. They walk miles and almost always in half darkness to fetch drops of life from a small pool trapped between rocks. It's stagnant, but that's the only source of water for these people.
4: कितने बजे पानी भरने आते हो आप यहाँ पे?
6: 5 बजे
4: सुबह का?
6: हाँ।
4: और यहीं से पानी भरते हो?
6: हाँ, यहीं से भरते हैं।
4: बीमार नहीं होते ऐसे पानी को पी के?
6: होते हैं बीमार भी, गंदा पानी।
4: अपने बच्चों को भी यही पानी पिलाते हो आप लोग?
6: हाँ, पिलाते हैं।
1: People fall sick. In monsoon, this water source turns muddy. With no other option available, This pond is their savior.
7: सर्दी बुखार तो हमेशा ही बच्चे लोगों को तो परेशानी करते हैं. बच्चे लोगों को एकदम परेशानी करते हैं. अभी भी ये बच्चे बीमार है, बुखार वगैरह पकड़ी है इसको, सर्दी खांसी पकड़ी है. अभी
8: सरकार से क्या कहना चाहोगे?
7: अब सरकार से तो हम कहते कहते थक गए हैं. अब 50-60 साल से यहाँ बैठा हुआ गांव, पूर्वज गांव है और यहाँ का देवता को भी बड़ा देव माना जाता है. हमारे कोलर परगाना का, वो कोलर परगाना का बड़ा देवता माना जाता है. फिर भी हम लोग देवताओं की तरफ से भी मांगते मांगते हम लोग थक गई. हम लोग कलेक्टर के यहाँ भी जाते जाते हम लोग थक गई.
5: विगत 30-35 सालों से यहाँ बोर के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमेशा जाते हैं अशासन से ही हम लोगों को दखल देते हैं. पता नहीं कब तक यहाँ बोर कनन होगा. यह तो कहा जाए आदिम काल के आदिमानव की तरह ही हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जो कानाबादोशी हैं हम लोग. यहाँ कहा जाए कि शासन से सिर्फ चावल मिलता ही, इसी वजह से कुछ तो मिलता है. यह तो कंदमूल खाकर ही जीवन यापन करते हैं यहाँ के वनवासी.
1: Their applications and appeals wait the nodding green signal through red tapes of the administration.
9: पिछले 2-3 महीने में हमने लगभग जिले में 180 से 190 बोर सैंक्शन कर दिए हैं, जिनको ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है. कुछ गांवों पे अभी भी मांग आ रही थी, जो अभी एक सूचना मिली है उसके तारतम्य में आगामी 2-4 दिन के भीतर सैंक्शन होते हुए बारिश के पहले यानी 15 जून के पहले किसी भी हालत में वो गांव में भी पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी. इसमें राज्य शासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और तत्काल हम लोग कार्य करेंगे.
1: नॉट वेरी फार फ्रॉम मासपुर, दली राजहारा इज नोन एज द आयरन ओर कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. Iron extracted from these hills has helped build industries, cities and livelihoods. But in a cruel twist to the tale, people living in the shadow of mining wealth struggle for something as basic as water. The municipality supplies water twice a day, but locals say it is insufficient.
10: नल बहुत लीकेज है, लीकेज में पानी गंदा आता है, पानी शरीर का पानी भरना पड़ता है. इस बात को पार्षद के पास लग गया, 1400 के पास लेकर नगर पालिका में गया, लेकिन कोई ध्यान लगाया.
1: द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द जल जीवन मिशन इन 2019 टू इंश्योर वाटर रीचेस ईच हाउसहोल्ड इन द कंट्री बाय 2024. उटावा विलेज इन धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. जल जीवन मिशन पाइप्स आर लेड, but there is no water supply. Women traverse difficult terrain to reach the water source to quench thirst, to serve daily needs.
11: उटावा गांव के संघर्ष की कहानी बयां करती है सबसे डरावनी तस्वीर है. मैं तकरीबन जमीन से, यानी वो पोखर जहां से ये महिलाएं पानी भरती है, उसे तकरीबन 30 फीट ऊपर खड़ा हूं, और इससे 20 फीट और ऊपर इन महिलाओं को जाना है, और महिलाएं छोटे बच्चे इसी तरीके से रोज़ाना यहाँ से पानी भर के अपने गांव तक जाते हैं. जो छोटा सा पोखर है, जहाँ से ज़मीन से पानी धीरे धीरे करके रिस्क करके 2 घंटे में उस पोखर को भरता है, और फिर उस पोखर से ये पूरा गांव पानी भर के एक साथ इसी तरीके से ये खाई पर चढ़ के अपने गांव पहुँचता है. और आप इनकी हिम्मत का अंदाज़ा लगाइए, या फिर इनकी मजबूरी देखिए, कि इस पथरीले रास्ते ऊबड़ खाबड़ चट्टानों के बीच में से होकर के ही उटावा गांव की ये महिलाएं और बच्चे रोजाना पीने के लिए और बाकी दैनिक जरूरतों के लिए इसी पानी पर निर्भर होते हैं.
1: द वॉटर इज नॉट फ्री फ्लोइंग आइदर. इट टेक्स 2 hours फॉर द पिट टू फिल अप. वुमेन वेट पेशेंटली टिल देन.
11: काकी, ये क्या रोज आते हो आप लोग? तो कितना समय लगता है इसमें, और ये पानी कहाँ से आ रहा फिर?
12: एक दोपहर हो जाता है, पानी भरते भरते लाइन लगती है. एक दोपहर तक 12 बजे तक हम जाते हैं, खाना खाते हैं पानी भर के, और माल ढोर के लिए जाता है. बारिश के टाइम में हवा चलती है, पेड़ गिर जाता है. एक मेरी जेठानी इधर गिर के पेड़ गिरा तो वो शांत हो गई. अच्छा। और भी सारा पेड़ है, गिर जाता है तो हमारा क्या नुकसान होता है? हम इधर से भरते भरते दोपहर आ जाती है. कब हम खेती का काम करते हैं, कब माल पानी को पानी पिलाता है.
11: सुबह आप कितने बजे आ जाते हो
12: यहाँ? तो हम 6-7 बजे से आते हैं. सुबह से, हाँ
11: सुबह 6-7 बजे से,
12: 5 बजे से भी आता है।
11: अच्छा,
12: 5 बजे 4 बजे।
11: ये सब भरने में कितना समय लगता है, सब भर के वापस कब जाते हो गाँव?
12: 12-11 बज जाती है
11: दोपहर के।
12: हाँ, 4-6 घंटे
11: कम से कम।
1: The hard part of this is not climbing down to this pit, but to climb up with liters of water filled containers. India Today correspondent faulted.
11: लम्मा जी मैं कर दूँ? अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो होता है।
1: And climbed up the whole route with her load of water. The village is just 60 kilometers from the Dhar district headquarters. Yet interdepartmental blame game ensures failure of the Jal Jeevan Mission here.
13: 2 साल से लगातार अभी योजना चल रही थी, परंतु इस वर्ष गर्मी के कारण जो डगमगल विभाग द्वारा किया गया था उसमें पानी जलस्तर पूरी तरह से समाप्त खत्म हो गया है, परंतु नलकूप में अभी जलस्तर कम हो गया। हमने उसमें पंचायत के माध्यम से पाइप बढ़ाकर योजना को चालू किया है, परंतु पर्याप्त पानी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसी वर्ष माह अप्रैल में नवीन नलकूप का खनन पुनः किया गया, परंतु उसमें भी जल आवक क्षमता कम है। उस नवीन नलकूप में हमारे द्वारा पंचायत को निर्देश दिए गए कि उसमें नवीन मोटर डाली जाए ताकि ग्राम के समस्त घरों को पानी मिल सके।
1: Over 600 million Indians face high to extreme water stress, according to Niti Aayog's Composite Water Management Index. As many as 2 lakh people die every year from inadequate access to safe drinking water. Across the fertile plains of Punjab and Haryana, the once abundant groundwater that powered the Green Revolution is rapidly vanishing. Decades of intensive paddy wheat cultivation, unchecked tube well extraction, inefficient canal systems, industrial pollution, and climate pressures have pushed the water table into a steep decline in many areas. In Fazilka district of Punjab, the crisis has boiled over into open protest. Farmers in villages like Bohar and Kalar Khera along the canal bearing the same name are furious that tail end areas receive little to no canal water despite government claims of reaching every field. In Mansa, the water table's relentless drop has forced farmers to abandon traditional engines and monoblock motors. Submersible pumps are now sunk 200 to 300 feet deep using specialized techniques.
14: ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਜੀ 40,000 ਚ 50 ਚ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 100 ਫੁੱਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 500 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੈਵਟੀ 'ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-10, 20-20 ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
1: Manpreet Singh of Sangrur has been witness to the crisis gripping many Punjab districts. Decades of large-scale paddy cultivation have accelerated groundwater depletion.
15: ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 20-25 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, 25 ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਖਤਮਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, 5-4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਲੈਣਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
16: ਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ,
15: ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆ, ਜਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
1: Punjab's world-renowned basmati rice, prized for its aroma, long grains and high market value with record exports, contributing significantly to India's basmati trade, has become one of the biggest contributors to the state's deepening groundwater crisis. It requires high water intensive cultivation, consuming approximately 4,000 to 5,000 liters of water per kilogram produced, with a heavy dependence on groundwater irrigation in the region.
17: पंजाब में कई जगह पे डार्क जोन बन गए हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी कल को। अब ये जो बासमती बेसिकली है या धान है, वो बेसिकली पंजाब की फसल नहीं है, लेकिन ज़्यादा कमाई के चक्कर में हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको उगा रहे हैं, क्योंकि इसमें उसको लगता है कि मेहनत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
1: Punjab is fighting hard, but the time is not ticking in its favor.
18: देखिए ये बताइए ना कि अब जो क्राइसिस देश फेस करेगा जब आप एथेनॉल की कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर मैं आप ही की रिपोर्ट थी एंड अगर मैं करेक्ट हूं तो मुझे, मैं करेक्ट नहीं हूं तो मुझे बताइए, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 10,000 लीटर एथेनॉल का एक लीटर जो एथेनॉल प्रोडक्शन होगी उसके लिए इतना पानी चाहिए. दिस इज डबल देन वॉट पंजाब डज फॉर पैडी. पंजाब का तकरीबन 3,000 से 5,000 लीटर के बीच में कंजम्पशन है एक लीटर या एक किलो राइस के लिए, ठीक है. लेकिन यहां तो एथेनॉल के एक किलो के लिए, अगर आप ही की रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं, वो कहती है कि 10,000 लीटर है. कौन सा एक्सपर्ट बोला है मुझे बता दीजिए देश में कि ये पानी का इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है, मुझे बताइए. क्या हमारी, हमारे वो जितना कंसर्न हम दिखाते हैं वो यहीं तक लिमिट है कि भाई कहां आम आदमी को मार पड़ेगी. देर इज एन एफर्ट नाउ कि भाई इसको, इसकी सप्लाई को आईसीआर कह रहा है कि इसकी सप्लाई को कॉस्ट उसका बेनिफिट एनालिसिस किया जाए, जो कैनाल वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका किया जाए ताकि हम देख सकें उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, कैनाल के ऊपर ज्यादा बेस हो, विच इज परफेक्टली राइट कि वो होना चाहिए. क्योंकि कैनाल इरिगेशन है पंजाब में, लेकिन कैनाल का ओवर द इयर्स वी हैवंट बॉदर्ड अबाउट कि कैनाल से ज्यादा वो ध्यान दिया जाए उसका.
1: इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा अनदर क्राइसिस इज ब्रूइंग. चरखी दादरी इज स्टेयरिंग एट अ सीवियर वाटर शॉर्टेज विद अ वाटर टेबल प्लंजिंग 10 टू 15 फीट एनुअली. इट हैज रिस्क्ड द फर्टाइल एरिया टर्निंग इनटू अ डेजर्ट.
19: डाटा वगैरह देखते हैं ऑफिस के अंदर पुराना हिस्टोरिकल, तो जो 95 में बाढ़ मतलब फ्लड आई थी अपने हरियाणा में, तो उस टाइम के बाद से रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है. और इसका दूसरा मेन रीज़न है, यहाँ पहले 2000 से पहले पैडी की फसल नहीं होती थी, धान की फसल जो हम बोलते हैं वो यहाँ इस एरिया में नहीं थे. बाजरा और कॉटन मेन क्रॉप थी यहाँ की, लेकिन जब से पैडी लगनी शुरू हुई है तो पानी की ज्यादा वो है यहाँ पे.
20: पहले से अब पैदावार कम हो रही है, पानी की वैरायटी भी कम है और खर्चे ज्यादा हो रहे.
1: एक्सपर्ट्स कीप रेजिंग द रेड फ्लैग.
21: लगातार भूजल स्तर के गिरने से बहुत नुकसान की संभावना और बढ़ती जा रही है, फायदा कोई नहीं है. हर साल 10 से 12 फुट गिरता ही चला जा रहा है और आज तक भी ऐसा लग रहा है कि और भी नीचे जा सकता है. और जैसे ही गहराई नीचे जाएगी पानी का जो गुणवत्ता है वो भी गिरती चली जा रही है.
1: There are contrasting realities as well. In Rohtak and Sonipat, water table has paradoxically risen due to canal irrigation and the 1995 floods. But the water is largely saline, unfit for drinking or irrigation.
22: मेरे याद है मैंने 2003 में मेरा बोर बनाया था, जब सवा हमारे नौ पाइप 20 फुट का एक पाइप होता है तो नौ पाइप पर था. आज मेरे बोर में 16 पाइप.
1: Near Sonipat, there are villages that face acute drinking water shortages. And contamination from factory effluents.
23: इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आज घोषणा की है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसे 39 ऐसे ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं. तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे कैनाल हैं, इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की श्रुति चौधरी मंत्री थी, कुछ ऐसे जो हमारे कैनाल के वहां पर ट्यूब लगाएंगे जिससे कि हमारा जो वाटर लेवल है उसमें उसका इजाफा हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की.
1: The groundwater table's decline is not just an agricultural issue. It threatens food security, public health, and rural economies in India's breadbasket. India is the largest user of groundwater in the world, consuming over 25% of the global total. And 70% of that groundwater is now contaminated with fluoride, arsenic, nitrate, or uranium. Per capita water availability currently stands at 1,486 cubic meters, already below the international water stress threshold of 1,700 cubic meters. It is projected to fall to 1,140 cubic meters by 2050, well into severe scarcity territory. By 2030, Niti Aayog estimates the demand will be double the available supply. The River Rhine ancient country depends on its glaciers in the north to feed its rivers and monsoon water in the south to energize the peninsula water bodies. With glaciers melting and a not-so-normal monsoon warning, the road ahead looks grim.
0: This year may turn out as a deficit year, rainfall deficit year or drought year. So our agriculture will more likely survive on the cost of pumped groundwater. Now, these years put additional pressures on groundwater sustainability and groundwater system. So effort should be made or being made to recharge artificially and recharge to the aquifers from where we are pumping directly.
1: Indian cities, be it Mumbai by the Arabian Sea or Hyderabad in the middle, Chennai by the Bay of Bengal, all suffer from water shortage in the summer and then get routinely flooded every monsoon. The paradox of the situation hits home when the taps run dry. But roads turn in canals, when glacier cover recedes and farmers cry, when women risk life for water on a daily basis. Because though surrounded by water, India is running dry, fast and furious.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: While creating a vibrant space for community, creativity, and pride.
7: Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
8: ये काम वाली देश से बाहर आई है
9: मुझे मेरे भैया थाईलैंड लेके आए हैं एक सोलो ट्रिप पे अनिश भैया ने आज बोला
10: आज आप अकेले दिन बिताओगे सोलो ट्रिप है खुद करना सीखो
6: अ डोमेस्टिक वर्कर्स फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हैज वन हार्ट्स ऑनलाइन रेशमा हु ट्रैवल टू थाईलैंड विद डिजिटल क्रिएटर अनिश भगत डॉक्यूमेंटेड हर एक्सपीरियंस ऑफ स्टेपिंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम
9: मेरा पहला ब्लॉग है
8: भैया ने बोला जिसमें इंटरेस्ट है वो करो मेरा इंटरेस्ट क्या है मैंने कभी सोचा ही नहीं
9: उसके लिए कभी टाइम ही नहीं मिला चलते चलते मंदिर पहुंच गए बैंकॉक के मंदिर बहुत सुंदर है एक नया देश आना मेरे सपनों से भी बड़ा है ये मेरे पहले जर्मन दोस्त थे बहुत डर लग रहा था एक आदमी के बिना कभी बाहर नहीं निकली हूँ यहाँ 7-Eleven बहुत फेमस है यहाँ मुझे पोपो मिली
6: From sightseeing to everyday discoveries, her excitement and joy resonated deeply with viewers.
9: उन्होंने अनिश भैया से फोन में बात कर ली जितनी इंग्लिश आती थी आज सब बोल दिया आज समझ में आया जितना मैं अपने को कम समझती हूँ उतना नहीं हूँ पता नहीं जिम्मेदारी के चक्कर में हम औरतें अपने आप को क्यों भूल जाती है फिर पार्क में बैठ के फिल्मों की तरह बुक पढ़ी और मैंगो टिक्की राइस खाया आज पहली बार गुस्सा आया क्यों हम औरतों को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है आज समझ आया
11: हर कामयाब आदमी के पीछे औरत की होती है क्योंकि औरतों को शादी के बाद आगे जाने का मौका ही नहीं देते
12: रेशमा
6: A Bengaluru man shared a heart-touching interaction with a specially abled Zomato delivery partner, turning a routine food delivery into a viral moment. The simple exchange of respect, appreciation and kindness struck a chord online, with many users praising the delivery agent's determination and positive spirit.
13: You are really inspiration for all of us. Thank you, sir. Thank you.
14: India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
15: Very good afternoon, viewers. Welcome back. You're watching India Today with me, Sriya Kundu. And we're beginning the bulletin on a rather very tragic note because this is an incident which we are learning of from a temple in Maharashtra. It's a roof of Yashwari Maruti Temple in Parbhani district. Four devotees have lost their lives as per the death count so far. And several others are still feared to be trapped under the debris that, in fact, was a result of... calming down. As you can see in the visuals, how in just a moment of seconds, while there were devotees all lined up in this very area, the roof just gave away and fell on top of them. The rescue and relief operations, however, now are currently underway. And so far, the death toll that we have learnt of is that 4 devotees have lost their lives. Many have been injured, of course, but those numbers are still awaited. But for now, these are the first visuals we are, in fact, accessing of this tragic incident that's come about at this very temple in Parbhani. We have Abhijit Karande joining us on the broadcast with more details on this episode that's come about. Abhijit, very good afternoon to you. What exactly went down here? How is it that this roof just gave away and came down upon these devotees who were lined up underneath?
3: As per the primary information from the police sources, they said that this temple is situated in a Manwat tehsil where it was under construction temple. A lot of devotees were there because of it is a Saturday, and we all know that on Saturday people used to visit Maruti temple. So some time ago that temple, which was under construction, and because of that was a heavy construction pile that collapsed on the devotees. As of now, 4 deaths have been confirmed by the officials. Right now, police personnel and fire brigade also reached there and trying to rescue the people from the debris. Some people are feared to be snatched into that debris. So there is a huge chaos right now nearby area also. Some people and some villagers also reaching there to rescue people, to help them. Police personnel and fire brigade also reached there. They are also trying to remove debris and help people who are actually into it. And this shocking incident came into light after the phone calls from the locals and some devotees made the calls to the police and government officials. So right now,
15: Abhijit, I hate to interrupt you here, and we'll come back for more details. At this given point, the death toll has risen to 5. However, we're shifting our focus. The Prime Minister is addressing this congregation at Tarakeshwar in West Bengal.
12: Pashchim Bang Divas ki aitihasik tarikh aur itni badi sankhya mein aap sabhi ki upasthiti aaj चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किस्से कहानियां लिखी गई, वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर

बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम

0: मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक
2: व्यूअर्स, दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर इन तारकेश्वर इन वेस्ट बंगाल एट दिस गिवन पॉइंट, एज वेस्ट बंगाल नाउ इज ऑब्जर्विंग जून 20th एज पश्चिम बंग दिवस, एंड दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैड टू से at this given point in his address to the people who had gathered there right ahead of the International Yoga Day celebrations in Kolkata tomorrow. With that, we are slipping into a short break. Do stay tuned as we come back.
3: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
4: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
8: You have a really wonderful, excellent exam, and you all do really, really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please, please, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress, and they really cannot afford to go through it again. All the best. Thank you very much. Love you again.
9: कल नीट की परीक्षा होनी है उसको लेकर के सरकार काफी संजीदा है क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार परीक्षा का मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार सरकार जो है उस पूरे मामले को लेकर के चिंतित है और यही वजह है कि तमाम जो स्कूल्स हैं उसमें आज मॉक ड्रिल जो है वो कराई जा रही है। एनटीए की तरफ से तमाम ऑफिसर्स आकर के हर स्कूल का विजिट कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन सेंटर का विजिट कर रहे हैं ताकि ये सुचारू रूप से ये पुख्ता किया जा सके कि एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर एग्जाम होना है वो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सेफ है या नहीं, वहां पर जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा, कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से तैयारियां ये हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर खासतौर पर जो लोग आते हैं अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए उनको भी परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी सरकार की तैयारियां जो है वो की गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सीएम श्री स्कूल है पंडारा पार्क का, जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर है, कल यहां पर परीक्षा होगी, लेकिन वहीं से तमाम जो सेंटर्स बनाए गए हैं एग्जामिनेशन उनके पास ही कूलिंग जोन जो है वो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से बनाए गए हैं ताकि जो अभिभावक आए वो यहां पर बैठ सके, उनको पानी दिया जाएगा, उनको शिकंजी दी जाएगी, उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। प्रॉपर यहाँ पर टेंट लगाकर इस तरीके के कूलिंग जोन बनाने की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। हर सेंटर पर इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। खुद एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर इसका मुआयना कर रहे हैं।

0: A city of dreams, a city of toppers, and now a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल में दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: मेनी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड विद नीट Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
4: Thanks.
0: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
5: Two years in Kota.

0: कल नीट की परीक्षा होनी है, उसको लेकर के सरकार काफी संजीदा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार परीक्षा का मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार सरकार जो है उस पूरे मामले को लेकर के चिंतित है। और यही वजह है कि तमाम जो स्कूल्स हैं उसमें आज मॉक ड्रिल जो है वो कराई जा रही है। एनटीए की तरफ से तमाम ऑफिसर्स आकर के हर स्कूल का विजिट कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन सेंटर का विजिट कर रहे हैं, ताकि ये सुचारू रूप से ये पुख्ता किया जा सके कि एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर एग्जाम होना है वो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सेफ है या नहीं। वहां पर जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैमर जो लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरे वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जवानों को भी तैनात किया जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वर्स भी जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से तैयारियां ये हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स पर खासतौर पर जो लोग आते हैं अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए, उनको भी परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी सरकार की तैयारियां जो है वो की गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सीएम श्री स्कूल है पंडारा पार्क का, जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर है, कल यहां पर परीक्षा होगी। लेकिन वहीं से तमाम जो सेंटर्स बनाए गए एग्जामिनेशन उनके पास ही कूलिंग जोन जो है वो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, ताकि जो अभिभावक आए वो यहां पर बैठ सके, उनको पानी दिया जाएगा, उनको शिकंजी दी जाएगी, उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। प्रॉपर यहाँ पर टेंट लगाकर इस तरीके के कूलिंग जोन बनाने की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। हर सेंटर पर इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। खुद एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर इसका मुआयना कर रहे हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: A city of dreams, a city of toppers, and now a city waiting for a second chance. As the NEET re-exam approaches on June 21st, anxiety is running high in Kota, the coaching capital of India.
1: Every year, almost over a lakh students enroll here in coaching centers. On the flip side, it's sometimes plummeted into depression and been infamous for suicides. But ahead of the NEET re-examination, what's the mood here? What are the students thinking? We go to the brainiest city of India to find out. Watch this special report.
0: Classes are packed once again. Students are back at their desks. But alongside preparations, there is uncertainty.
2: अब कभी पेपर लीक हो जा रहा है दो तीन साल से तो हर बार तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि अब ये गलत स्ट्रीम हो रहा है हमारे लिए कि हमें भी तो दो दो बार एग्जाम देना पड़ रहा है दो दो बार पढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं गार्जियंस भी मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को हमने इतना पढ़ाया दो साल मैंने मेहनत की बच्चों पे और फिर उनका तीन साल का ये एग्जाम का गैप और बढ़ गया
3: फिर से 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनका फिर अभी भी डर लगा हुआ है कि अगर लीक हो गया तो फिर हमारा क्या होगा इसमें बच्चों का फिर अगर एग्जाम के बाद बाई चांस लीक हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि फिर उनका फिर मन से अंदर से दिल टूट जाएगा फिर उन्हें कभी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा
0: Many had already finished with NEET. Some sold their books, others returned home. Then came the cancellation and the order for re-exam after a paper leak. A second round of preparation, a second round of stress.
4: Thanks.
0: But one question dominates conversations at tea stalls, libraries and coaching centers alike. Can the system guarantee a fair exam this time?
5: दो साल से ही कोटा में हम यहाँ दो साल से तैयारी कर रहे हैं अच्छा एग्जाम गया था वैसे लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा 21 तारीख को पेपर देने वापस दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा तो भूल जाते हैं ना रिदम टूट गया था मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम

0: to Eknath Shinde's camp. These six MPs did not even attend a crucial meet called by Uddhav Thackeray on Thursday. In response, the party has issued formal show-cause notices to the absentee MPs. If they fail to reply within the stipulated deadline, the party will treat it as a voluntary surrender of membership and initiate action under the anti-defection law.
1: That will be decided. I mean, if he does that, it will be decided by Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray party's, our president Uddhav ji will take this. We have already taken the step. We have issued them the show cause notice. And it's a process. It's an ongoing process. Let's see how things evolve, how things develop.
2: Chhatrapati Shivaji Maharaj ki!
0: The turmoil in UBT camp has handed the BJP and the Shiv Sena fresh ammunition against Uddhav Thackeray.
3: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय. पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे. फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही.
0: The internal rebellion has given BJP and the Shiv Sena to attack Uddhav Thackeray. Home Minister Amit Shah took a sharp swipe at the UBT chief, declaring that Maharashtra now has only one Shiv Sena.
4: Shiv Sena ke adhyaksh aur Maharashtra ke upamukhyamantri Shri Eknath Shinde ji. पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था. अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है.
5: साहिबाना शाल पुष्पहार.
0: Meanwhile, the battle has also descended into a war of metaphors. Tigers, wolves and dogs have become the latest weapons in the bitter feud between the rival Sena factions. Eknath Shinde fired the first salvo, saying dogs keep barking while the tigers roar.
6: Kuch kutte roj bhok rahe hain. Pan mi tumhala sangto, kutte jhund mein aake bhokte hain. Sher akela aata hai. Kutte bhokte rehte, tiger shikar karta hai.
0: The Uddhav camp hit back swiftly, saying not every dog is loyal.
7: ये सब बेईमान लोग हैं.
8: जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं. कोई भी हो, उनका सीरियसली सीरियस, जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे. जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे. आप देखो,
0: as the political slugfest intensifies and the cracks within Uddhav Sena widen, one question looms large. Can Operation Tiger bring an end to Uddhav Thackeray's political run in Maharashtra? Bureau Report, India Today.
9: This is a tragedy at a temple in Maharashtra. At least 6 devotees have died and several others have been injured when the roof of an under-construction Hanuman temple collapsed during a religious program at Yashwari in Parbhani district. The administration launched rescue operations on a war footing, with efforts being underway to reach those believed to be buried beneath the very rubble. A large number of devotees had gathered at the temple. Meanwhile, the Prime Minister has condoled the loss of lives in Parbhani. Chief Minister Devendra Fadnavis too has expressed grief over this tragic incident.
10: ये मंदिर का पूरा काम चालू था, इन कंस्ट्रक्शन वर्क था ये. हाँ, तो इस वजह से, लेकिन पूरी हमारी टीम थी यहाँ के, पूरे गांव वाले थे. हमारे पास का गांव है, हमारा गांव है जो, और यहाँ के पूरे जो सरपंच थे, पुलिस पटेल वगैरह, ये सब लोग थे. और ये मंदिर कमेटी के जो बहुत सारे लोग थे, इन सब ने हमें हम सबकी मदद से और पूरे भाव श्रद्धालुओं की मदद से सभी पत्थर को लिफ्ट करे आके, यहाँ के जो भी अंदर आदमी, औरतें, बच्चे वगैरह सब कुछ फंसे हुए थे, उनको लिफ्ट करा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है. इसमें, इस घटना में 10 से 15 लोग घायल हुए और शायद डेथ का आंकड़ा 5 से 6 है अभी.
11: यही है यशवाड़ी का मंदिर, जो कि आज फिर 3:16 पर दुर्घटना घटी है, जो कि अलग अलग जख्मी को अलग अलग अस्पताल में

0: to the absentee MPs. If they fail to reply within the stipulated deadline, the party will treat it as a voluntary surrender of membership and initiate action under the anti-defection law.
1: That will be decided. I mean, if he does that, it will be decided by Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray parties, our president Uddhavji will take this. We have already taken the step. We have issued them the show cause notice. And it's a process. It's an ongoing process. Let's see how things evolve, how things develop.
2: Chhatrapati Shivaji Maharaj ki!
0: The turmoil in UBT camp has handed the BJP and the Shiv Sena fresh ammunition against Uddhav Thackeray.
3: 60 varsha purna zaleli ahet geli jawalpas 12 13 varsha mi tumchi netrutvachi jababdari sambhaltoy pan je aarop majyavarti hotayet te jar tumhala khare vatat astil tar tumhi mala sangaycha mi atta ya padavarna pay utarvayla tayar ahe fakt maji ek at ahe ki hi sonyasarki shivasena choracha darode khoracha hatat jau dayachi nahi.
0: The internal rebellion has given BJP and the Shiv Sena to attack Uddhav Thackeray. Home Minister Amit Shah took a sharp swipe at the UBT chief, declaring that Maharashtra now has only one Shiv Sena.
4: Shiv Sena ke adhyaksh aur Maharashtra ke upamukhyamantri Sri Eknath Shinde ji. पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है.
5: साहिबाना शाल पुष्पहार.
0: Meanwhile, the battle has also descended into a war of metaphors. Tigers, wolves and dogs have become the latest weapons in the bitter feud between the rival Sena factions. Eknath Shinde fired the first salvo, saying dogs keep barking while the tigers roar.
6: Kuch kutte roj bhok rahe hain. Pan mi tumhala sangto, kutte jhund mein aake bhokte hain. Sher akela hota hai. Kutte bhokte rehte, tiger shikar karta hai.
0: The Uddhav camp hit back swiftly, saying not every dog is loyal.
7: ये सब बेईमान लोग हैं.
8: जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं. कोई भी हो, उनका सीरियसली सीरियस, जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे. जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे. आप देखो.
0: As the political slugfest intensifies and the cracks within Uddhav Sena widen, one question looms large. Can Operation Tiger bring an end to Uddhav Thackeray's political run in Maharashtra? Bureau Report, India Today.
9: This is a tragedy at a temple in Maharashtra. At least 6 devotees have died and several others have been injured when the roof of an under-construction Hanuman temple collapsed during a religious program at Yashwari in Parbhani district. The administration launched rescue operations on a war footing, with efforts being underway to reach those believed to be buried beneath the very rubble. A large number of devotees had gathered at the temple. Meanwhile, the Prime Minister has condoled the loss of lives in Parbhani. Chief Minister Devendra Fadnavis, too, has expressed grief over this tragic incident.
10: ये मंदिर का पूरा काम चालू था, इनकंस्ट्रक्शन वर्क था ये. हाँ, तो इस वजह से, लेकिन पूरी हमारी टीम थी, यहाँ के पूरे गांव वाले थे. हमारे पास का गांव है, हमारा गांव है जो, और यहाँ के पूरे जो सरपंच थे, पुलिस पटेल वगैरह, ये सब लोग थे, और ये मंदिर कमेटी के जो बहुत सारे लोग थे, इन सब ने हमें हम सबकी मदद से और पूरे भाव श्रद्धालुओं की मदद से सभी पत्थर को लिफ्ट करे आके, यहाँ के जो भी अंदर आदमी और के बच्चे वगैरह सब कुछ फंसे हुए थे, उनको लिफ्ट करा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है. इसमें इस घटना में 10 से 15 लोग घायल हुए और शायद डेथ का आंकड़ा 5 से 6 है अभी.
11: यही है यशवाड़ी का मंदिर, जो कि आज फिर 3:16 पर दुर्घटना घटी है, जो कि अलग अलग जख्मी को अलग अलग अस्पताल में शरीक किया गया है, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है. आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुरी पैमाने पे अपना काम कर रही है.
12: देहाती हीरो की

0: That will be decided. I mean, if he does that, it will be decided by Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray parties, our president Uddhavji will take this. We have already taken the step. We have issued them the show cause notice. And it's a process. It's an ongoing process. Let's see how things evolve, how things develop.
1: Chhatrapati Shivaji Maharaj ki!
2: The turmoil in UBT camp has handed the BJP and the Shiv Sena fresh ammunition against Uddhav Thackeray.
3: 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे. फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही.
2: The internal rebellion has given BJP and the Shiv Sena to attack Uddhav Thackeray. Home Minister Amit Shah took a sharp swipe at the UBT chief, declaring that Maharashtra now has only one Shiv Sena.
4: Shiv Sena ke adhyaksh aur Maharashtra ke upamukhyamantri Shri Eknath Shinde ji. पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है.
5: साहिबाना शाल पुष्पहार.
2: Meanwhile, the battle has also descended into a war of metaphors. Tigers, wolves and dogs have become the latest weapons in the bitter feud between the rival Sena factions. Eknath Shinde fired the first salvo, saying dogs keep barking while the tigers roar.
6: Kuch kutte roj bhok rahe hain. Pan mi tumhala sangto, kutte jhund mein aake bhokte hain. Sher akela aata hai. Kutte bhokte rehte, tiger shikar karta hai.
2: The Uddhav camp hit back swiftly, saying not every dog is loyal.
7: ये सब बेईमान लोग हैं।
8: जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो, उनका सीरियसली सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे. आप
2: As the political slugfest intensifies and the cracks within Uddhav Sena widen, one question looms large. Can Operation Tiger bring an end to Uddhav Thackeray's political run in Maharashtra? Bureau Report, India Today.
9: This is a tragedy at a temple in Maharashtra. At least 6 devotees have died and several others have been injured when the roof of an under-construction Hanuman temple collapsed during a religious program at Yashmari in Parbhani district. The administration launched rescue operations on a war footing, with efforts being underway to reach those believed to be buried beneath the very rubble. A large number of devotees had gathered at the temple. Meanwhile, the Prime Minister has condoled the loss of lives in Parbhani. Chief Minister Devendra Fadnavis too has expressed grief over this tragic incident.
10: ये मंदिर का पूरा काम चालू था, इन कंस्ट्रक्शन वर्क था ये. हाँ, तो इस वजह से लेकिन पूरी हमारी टीम थी, यहाँ के पूरे गांव वाले थे. हमारे पास का गांव है, हमारा गांव है जो, और यहाँ के पूरे जो सरपंच थे, पुलिस पटेल वगैरह, ये सब लोग थे, और ये मंदिर कमेटी के जो बहुत सारे लोग थे, इन सभी ने हम सबकी मदद से और पूरे भावी श्रद्धालुओं की मदद से सभी पत्थर को लिफ्ट करे आके, यहाँ के जो भी अंदर आदमी और थे, बच्चे वगैरह सब कुछ फंसे हुए थे, उनको लिफ्ट करा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है. इसमें इस घटना में 10 से 15 लोग घायल हुए हैं और शायद डेथ का आंकड़ा 5 से 6 है अभी.
11: यही है यशवाड़ी का मंदिर जो की आज 3:16 पर दुर्घटना घटी है, जो की अलग अलग जख्मियों को अलग अलग अस्पताल में शरीक किया गया है, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है. आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुरी पैमाने पे अपना काम कर रही है. देहाती इलाकों के लोग भी मदद कार्य के लिए जुटे हैं.
9: In his first address after BJP's poll victory in Bengal, Prime Minister Narendra Modi took sharp jibes at the TMC and other opposition parties.

0: सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही.
1: बोलिये जय शिवाजी.
2: द इंटरनल रेबेलियन हॅज गिव्हन बीजेपी अँड द शिवसेना टू अटॅक उद्धव ठाकरे. Home Minister Amit Shah took a sharp swipe at the UBT chief, declaring that Maharashtra now has only one Shiv Sena.
1: Shiv Sena ke adhyaksh aur Maharashtra ke upamukhyamantri Shri Eknath Shinde ji pehle Shinde ji ke piche Shiv Sena Shinde gut kehna padta tha. अब कोई घूट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है.
3: साहिबाना शाल पुष्पहार.
2: मीनवाइल द बैटल हैज ऑल्सो डिसेंडेड इनटू अ वॉर ऑफ मेटाफर्स. टाइगर्स, वुल्व्स एंड डॉग्स हैव बिकम द लेटेस्ट वेपन्स इन द बिटर फ्यूड बिटवीन द राइवल सेना फैक्शंस. एकनाथ शिंदे फायर्ड द फर्स्ट साल्वो, सेइंग डॉग्स कीप बार्किंग व्हाइल द टाइगर्स रोर.
4: कुछ कुत्ते रोज भौंक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोगते हैं, शेर अकेला होता है. कुत्ते भोगते रहते, टाइगर शिकार करता है.
2: द उद्धव कॅम्प हिट बॅक स्विफ्टली, सेइंग नॉट एव्हरी डॉग इज लॉयल.
5: ऐसा बेईमान लोग है,
6: जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं. कोई भी हो, उनका सीरियसली सीरियस, जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे. जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे. आप देखो,
2: एज द पॉलिटिकल स्लगफेस्ट इंटेंसिफाइज एंड द क्रैक्स विद इन उद्धव सेना वाइडन, वन क्वेश्चन लूम्स लार्ज. Can Operation Tiger bring an end to Uddhav Thackeray's political run in Maharashtra? Bureau Report, India Today.
7: This is a tragedy at a temple in Maharashtra. At least 6 devotees have died and several others have been injured when the roof of an under construction Hanuman temple collapsed during a religious program at Yashwari in Parbhani district. The administration launched rescue operations on a war footing, with efforts being underway to reach those believed to be buried beneath the very rubble. A large number of devotees had gathered at the temple. Meanwhile, the Prime Minister has condoled the loss of lives in Parbhani. Chief Minister Devendra Fadnavis, too, has expressed grief over this tragic incident.
8: ये मंदिर का पूरा काम चालू था, इनकंस्ट्रक्शन वर्क था ये. हाँ, तो इस वजह से, लेकिन पूरी हमारी टीम थी, यहाँ के पूरे गांव वाले थे. हमारे पास का गांव है, हमारा गांव है जो, और यहाँ के पूरे जो सरपंच थे, पुलिस पटेल वगैरह, ये सब लोग थे, और ये मंदिर कमेटी के जो बहुत सारे लोग थे, इन सब ने हमें हम सबकी मदद से और पूरे भावी श्रद्धालुओं की मदद से सभी पत्थर को लिफ्ट करे आके, यहाँ के जो भी अंदर आदमी और थे, बच्चे वगैरह सब कुछ फंसे हुए थे, उनको लिफ्ट करा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है. इसमें इस घटना में 10 से 15 लोग घायल हुए और शायद डेथ का आंकड़ा 5 से 6 है.
9: यही है यशवाड़ी का मंदिर, जो कि आज फिर 3:16 पर दुर्घटना घटी है, जो कि अलग अलग जख्मी को अलग अलग अस्पताल में शरीक किया गया है, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है. आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुरी पैमाने पे अपना काम कर रही है. देहाती इलाकों के लोग भी मदद कार्य के लिए जुटे हैं.
7: In his first address after BJP's poll victory in Bengal, Prime Minister Narendra Modi took sharp jibes at the TMC and other opposition parties while crediting the Suvendu Adhikari-led government with revitalizing the state. While speaking at the Pashchim Bango Divas celebrations held at Hooghly's Tarakeshwar, he said that the state has been freed of its shackles and that Poriborton has lifted people's spirits. Prime Minister Modi also claimed that the double-engine government is working in super-fast pace to address the damage and shortcomings created by the left and then the TMC over decades in Bengal. Recalling Bengal's past, Prime Minister Modi claimed that attempts were allegedly made to separate Bengal from India and that those designs were ultimately defeated. He also blamed the previous governments led by the Congress, the Left Front, and the TMC for neglecting West Bengal's interests, alleging that foreign ideologies were imposed time and again over the state.